0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। दोस्तों, वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: नाम क्या है आपका?
0: जी शहनाज।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: संजय कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: उनके अंदाजे करम।
1: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: नमस्ते मैम।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैम मेरा नाम पायल जगह है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: शादी बोली।
1: शादी बोली?
2: हाँ मैम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: थैंक यू मैम।
1: यू वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है गुरु, गीत के बोल है बरसो रे मेगा मेगा बरसो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।
1: थैंक यू,
0: वेलकम। हेलो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

एफडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: Radio DS 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: हेलो
1: दीदी ना, नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी। राधे राधे।
1: राधे राधे।
0: कैसे हो आप?
1: ठीक है दीदी, और आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। व्रत है मेरा आज, गुरुवार का भी, ग्यारस का भी।
1: आज निरजला ग्यारस है ना?
0: हाँ वही तो। दीदी आज आपने कमाल कर दिया, क्या भजन सुना रहे हो आप?
1: तो अच्छा लगे
0: देखिए, बहुत मस्त। मैं ना रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया।
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे दीदी?
0: मुझको सुनना है, मेरे नैनों में बस गए बाके वे यारी, मेरी तो सारी नींद उड़ गई।
1: ओके दीदी सुना।
0: बस गए नैनों में बाके वे यारी, मेरी तो सारी नींद उड़ गई।
1: ओके दीदी सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू दीदी, थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: हेलो जी, नमस्कार जी।
2: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तेलुखेड़ा से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: हम हैं प्यार की डगर के दो मुसाफिर, फिल्म का नाम है दो मुसाफिर।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद मेरी बहन
2: जी। वेलकम सर।

0: धन्यवाद।
1: मैं प्यार
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश सर। हेलो
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते सर।
2: नमस्ते फरोगी जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना बढ़िया लेके आए हैं आपके चैनल के लिए।
0: हाँ जी बताइए।
2: कौन हो तुम जो दिल में।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है
0: जी, वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये जो तेरे पायलों की छन छन है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: धनी राम गुजर बोल रहा हूँ, राम गुजर क्या से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने के रोल है इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको सर।

0: हेलो नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम मैं आपको
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर? कौन सा गाना सुनना चाहिए
0: सुना दो।
1: सर आवाज नहीं आ रही पीछे बच्चों की वजह से।
0: ऐसा सुना दो ओल्ड मोड से आपके पसंद हो जो।
1: ओके सर सुना रही हूँ आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: पागल हो गई हो क्या?

0: मेरा नाम दिव्यांशी है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: हम सुनना चाहेंगे दिल ना दिया।
1: मैम ये गाने बंद हो गए हैं, दूसरा बता दो कोई अच्छा सा।
0: ओके वाला लगा दो।
1: आपको सरमाइश पड़ेगा ना।

0: पाछे इतने ना फिरे।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: दीपा ग्रेगर।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल मेरा तोड़ के हस्ती।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: रिया वैरवा।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मुमताज।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम ध्रुव शर्मा।
1: कौन से बात कर रहे हो?
0: कौन
1: सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वन लव बाय शुभ सिंह।
1: वन लव,
0: वन लव।

तो वक्त हो चुका है 11 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: सर नमस्ते, प्रणाम, क्या है आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: अरे यार मुझे सुना जी प्रेम कैदी फिल्म का गाना है ना, प्रीत माँ ओ मेरी प्रीत माँ।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।
1: साथी हैं मैडम है श्री कृष्णा, पत्नी है मेरी शर्मा है, साथी शर्मा है, दोस्त है मेरे जूते के विजय पांडे जी और पूर्ण वर्मा जी हैं राजस्थान से।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।
1: ओके मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है ये सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: गंगापुर से। किस समय
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके थैंक्स मैम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सचिन गुज्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।
2: 89.6 पे।
3: हेलो।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: रोहित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: आलस नगर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: डीजे वाले बाबू।

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो।
4: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
3: नमस्कार मैम।
4: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम खिल्लू टेलर और मेरे भाई और गाना सुनना चाहते लावारिस फिल्म का, जिसकी बीवी नाम भी उसका बड़ा नाम है, राजू है, भूपेंद्र है।
4: हाँ जी,
3: सलेमपुर से।
4: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आप सुनवा देंगे अलका याग्निक जी पर कोई भी प्यारा संगीत?
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कुमार खटनावलिया।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: मिर्जापुर गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: लौट के आ जाना मेरे मित्र, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नीतीश मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सी गाना सुनना चाहोगे? और कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रिम झिम रिम झिम।
1: ओके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
6: हेलो,
7: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
6: निकिता।
7: कहाँ से बात कर रही हूँ?
6: रेलवे स्टेशन।
7: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
6: तीन वाण के धारी, तीन वाण।
7: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिणाम

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी नवदीप सिंह सिद्धू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: पंजाब चंडीगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: हिंदू तेरी शान बदले।
1: कौन सा था?
0: हिंदू तेरी शान बदले।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:50 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डी एस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती।
5: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
6: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
7: हेलो।
8: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
7: कोमल।
8: कहाँ से बात कर रहे?
7: गंगापुर सिटी।
8: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
7: मैं तो तेरी हीर बन गई।
8: ओके मैम, सुना रहे हैं आपको, फरमाइश करिएगा।
7: दीदी को

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: विश्वास गुर्जर।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: आदेश।
2: कौन सा?
3: आदेश।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कार्तिक।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: किसी राजा से तेरे अकल वाले।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: पर एक बढ़िया मानस था, सारा काम एकला देखा करता, उसके जाए पाछे सारी जिम्मेदारी तेरे पर आ गई। पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान था, खेती बाड़ी पर ध्यान था।

0: हाँ जी, नाम क्या है?
1: देवप्रिया जी।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरे
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी परमानेंट परिवार।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम प्रकाश है।
1: कौन से बात कर रही हो?
0: फ्रेंच।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी करता दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: विष्णु।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी। ठीक है, तो आप गाना चलाइए, जाने तू।
0: जाने तू?
1: यस।
0: ओके सर, सुना।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: Thank you.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।
2: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो DS पर।

यादें रुलाती हैं, पर सच कहूं तुम्हारी यादों ने तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन आबाद कर दिया है। अब तो आलम यह है कि भरी भीड़ में होकर भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: नाम है मेनका कुमारी शर्मा। आप सुन रहे हो अपना एक प्रिय कार्यक्रम 89.6 रेडियो DS। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। विषय है आज की महिला जागरूक और तकनीकी शिक्षा में उसका बढ़ता वर्चस्व। 21वीं सदी को विज्ञान, तकनीक और नवाचार का युग कहा जाता है। आज दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय महिलाएं भी पीछे नहीं है। वे न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही है बल्कि इन क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रही है। एक समय था जब तकनीकी शिक्षा को केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज महिलाएं इस सोच को बदलते हुए हर तकनीकी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का मनवा ले रही है। आइए जानते हैं तकनीकी शिक्षा का महत्व। तकनीकी शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, चिकित्सा, मशीनरी और आधुनिक उपकरणों के ज्ञान से जोड़ती है। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता बल्कि नवाचार, शोध और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना भी होता है। आज के युग में तकनीकी शिक्षा के बिना किसी विकास की कल्पना करना कठिन है। आइए जानते हैं महिला किस प्रकार जागरूक होती है अपनी पहचान के प्रति। आधुनिक

महिला केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वह शिक्षित, आत्मनिर्भर, जागरूक और तकनीकी रूप से सक्षम बन रही है। आज की महिला कंप्यूटर चलाती है, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है, डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करती है, ऑनलाइन व्यवसाय संचालित करती है, तकनीकी कंपनियों में काम भी करती है, शोध और नवाचार में योगदान देती है। यह परिवर्तन शिक्षा और जागरूकता का परिणाम है। शिक्षा से आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त होती है? जब महिला शिक्षित होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तकनीकी शिक्षा उसे रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करती है। एक शिक्षित महिला स्वयं निर्णय ले सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती है, बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित कर सकती है, समाज में सकारात्मकता का बदलाव ला सकती है। आइए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाएं किस प्रकार अपनी भागीदारी देती है। आज सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है लगातार। महिला निम्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, सॉफ्टवेयर विकास, वेब डिजाइनिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल ऐप विकास, क्लाउड कंप्यूटिंग। भारत की अनेक आईटी कंपनियों में महिला महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है। इंजीनियरिंग में भी महिलाओं का बढ़ता योगदान इस प्रकार है। कभी इंजीनियरिंग को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आज महिलाएं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बड़ी संख्या में प्रवेश कर रही है। वे पुल, सड़कें, भवन, मशीनें और आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। अंतरिक्ष में भी महिलाओं की बहुत बड़ी उपलब्धियां है। भारत की महिला वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। कल्पना चावला ने पूरी दुनिया में भारतीय महिलाओं का नाम रोशन किया है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी अनेक महिला वैज्ञानिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। इन उपलब्धियों ने लाखों बालिकाओं को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। आज महिलाएं चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य तकनीकी के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। वे डॉक्टर, सर्जन, नर्स, शोधकर्ता, चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में समाज की सेवा कर रही है। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल इंडिया और महिलाएं, भारत सरकार की डिजिटल पहल ने महिलाओं के लिए नए नए अवसर पैदा किए हैं। आज महिलाएं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, डिजिटल भुगतान कर रही है, ई कॉमर्स से व्यवसाय चला रही है, ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से नई जानकारियां प्राप्त कर रही है। ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी की जागरूकता, तकनीक का लाभ अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, कृषि संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा रही है। यह बदलाव ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रहा है। तकनीकी शिक्षा और महिला उद्यमिता, तकनीकी शिक्षा महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ उद्यम भी बना रही है। आज महिलाएं ऑनलाइन स्टोर चला रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, फ्लार्सिंग कार्य कर रही है, स्टार्टअप शुरू कर रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और आर्थिक विकास को गति मिल रही है। समाज पर सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? जब महिलाएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करती है तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। प्रमुख लाभ, परिवार की आय बढ़ती है, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, गरीबी कम होती है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं के सामने कई चुनौतियां होती है, जैसे कि हालांकि महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, आर्थिक बाधाएं, सामाजिक रूढ़िवादियां, तकनीकी शिक्षा तक सीमित पहुँच, इन चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है। समाधान और आगे की राह, महिलाओं की तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा, हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, छात्रवृत्ति और सहायता, तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए, सुरक्षित और प्रोत्साहन वातावरण, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले, परिवार का सहयोग, परिवार महिलाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करे। राष्ट्र निर्माण में तकनीकी रूप से सक्षम महिला, एक तकनीकी रूप से शिक्षित महिला को केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का विकास करती है। वह नवाचार को बढ़ावा देती है, नई तकनीकों का विकास करती है, रोजगार सृजित करती है, समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाती है, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है।
निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है। आज की जागरूक महिला शिक्षा विज्ञान और तकनीक के नए क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह सिद्ध कर रही है कि प्रतिभा, मेहनत और अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। तकनीकी शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सक्षम बनाती है। एक शिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष महिला परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास की मजबूती आधारशीलता होती है। आइए हम संकल्प लेके प्रत्येक बेटी को तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां महिलाएं विज्ञान, तकनीक और नवाचार के हर क्षेत्र में नेतृत्व करें। शिक्षित महिला, तकनीकी रूप से सक्षम महिला और आत्मनिर्भर महिला ही विकसित भारत की पहचान है। धन्यवाद। नमस्कार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

वापस तो वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

तो वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुनी थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पैर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:52 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो गई, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गुड इवनिंग दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वेग गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है और आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।

0: कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से?
1: सिंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊंगी।
0: कौन सा गाना?
1: मेरे मोह के धागे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: दुर्गा देवी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मिर्जापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: और आज प्यार।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: ना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन
0: ब्राह्मण योद्धा?
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते बहन जी।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: नाम चौधरी, आज कर रहा हूँ सेवा जी से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बरसात कैसी है जी जाए?
1: सर बरसात नहीं हो रही, मौसम हो रहा है सुबह शाम पर, बरसात नहीं हो रही।
0: अच्छा, हो जाएगी गाने के साथ गाना लिखो।
1: हाँ जी सर बताइए गाना।
0: शाम हुई ढलाई बदरिया,
1: शाम हुई
0: ढलाई बदरिया,
1: ढलाई बदरिया,
0: हाँ चढ़ाई बदरिया जो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएफ में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सीट।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दंगरसिया।
0: कौन सा?
1: दंगरसिया।

मिनट का तो गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: परम माधुरी दीदी, सादर नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचान ब्रज रेडियो के मित्र साधव प्रसाद प्रजापति किराना की मथुरा उत्तर प्रदेश की वार्ता कर रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, और कैसे हो सर?
1: दीदी मैं अच्छा हूँ, आकाश सिंह बांके बिहारी के पास सब लोग अच्छे से हैं, रेडियो सुनते रहते हैं, आप लोगों से वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात होती है।
1: जी मैं इंतजार करते रहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ।
0: नहीं सर, टाइम पर खुला है फोन, तो उसी टाइम पे खुला है।
1: जी जी, मेरी पहली कॉल है कि दूसरी?
0: सर आपकी शायद चौथी कॉल है।
1: ओके दीदी जी, दीदी आज करिश्मा कपूर का जन्मदिन है। हाँ। और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए फिल्म का नाम है फिजा।
0: फिजा
1: तो फिजा है, हवा है, जमी की नहीं है, बहुत ही सुंदर प्यारा गीत करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया, फिल्म का नाम फिजा टाइटल सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे आपको फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।
0: वेलकम सर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: छोड़ती रहती
1: है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: पिंकी।
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: एक था बुल एक थी बिल्कुल बोले सुन बाबुल।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं। आपकी तरफ कर रहे हैं
3: 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम रक्षिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ले जा ले जा रे।
0: ओके, अरे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #ouch #ho और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे बुदली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: हंजी राम गुजर बोल रहा हूँ।
0: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
1: राम गुजर क्या से बोल रहा हूँ।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अच्छा
0: कौन सा सर?
1: इंसान कितना गिर गया दौलत के काम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: और इसकी फरमाइश है आशा आशा भाई जी है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सबकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम पूजा शर्मा है मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी नोएडा रोड।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैं किसी और का हूँ, फिलहाल तेरा हो जाऊँ।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम है अकरम खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये तू कितनी खूबसूरत है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशिका मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: कर्मचारी कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये इश्क़ कर आतर कर साहेबा।
1: कौन सा?
0: ये इश्क़ कर।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आप।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां पसंद तो सबको होती है क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन इन्हीं सर्दियों से लोग परेशान होते हैं डैंड्रफ की वजह से। मैं हूं आरजे खुशी। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ना डैंड्रफ से, तो कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं। देखिए, आंवला, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, वो इसलिए ताकि आप आंवले को अपना लें अपने जीवन में। आंवले का जो तेल है वो पूरी तरीके से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। एक और चीज, हम लोग सर्दियों में क्या नहाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सर धो के नहाना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपने वॉश बार बार नहीं किया ना सर को, तो डैंड्रफ जमा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सर धोना ही चाहिए सर्दियों में। एक और बात, हम लोग नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्म पानी हम जैसे ही अपने सर में डालते हैं ना, तो ये डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। इसलिए सर में अगर आपको पानी डालना है तो गुनगुना पानी लें, एकदम गर्म पानी कभी भी सर में ना डालें। इन टिप्स को फॉलो करें और सर्दियों को खुल के एंजॉय करें। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय पर। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हमारे सारे दुख का कारण है हमारी खुद की आकांक्षाएं। मैं हूँ आरजे खुशी। कैसे हैं आप सब लोग? नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हर दिन की तरह आज भी हम अपने आप में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं भगवत गीता जब पढ़ रही थी तो मैंने एक चीज देखी। अपनी पूरी बात कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम ही जानो। मैं अपनी कोई बात तुम पे थोपूंगा नहीं। और सोचिए, यही हम लोग मात खा जाते हैं। हमने अगर किसी को कुछ समझा दिया तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने ही माने। यहीं पे अगर हमने सामने वाले को फ्रीडम दे दी, अगर उसको उसके हिसाब से रहने दिया, तो शायद वो हमारी बात जरूर मानेगा। सोच कर देखिए। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियाँ बहुत सही वक्त है अपने आप को हेल्दी रखने का। मैं हूँ आरजे खुशी। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। देखो, गर्मियों में तो हम लोग विटामिन डी नहीं ले सकते, यानी कि सूरज के नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन सर्दियों में हमारे पास में मौका है जिसको हमें गंवाना नहीं है। और अगर आपके घर में थोड़ा सा तिल का तेल है ना, तो अपने घुटनों पे, अपने बालों में, अपने सर पे आप तिल का तेल लगाकर बैठ सकते हैं। इससे जिस भी प्रकार के दर्द आपको होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि अगर घुटनों में दर्द रहता है या कोई घर में बड़े बूढ़े हैं या खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई है तो भी तिल का तेल आपके बहुत काम आएगा। तो तिल का तेल इस्तेमाल करें और धूप में जरूर बैठे। केवल सर्दियों सर्दियों में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब ठीक हो जाएगी। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस काल का।
1: जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर। मैं हूँ आरजे खुशी और मुझे ऐसा लगता है जब भी हमको मौका मिले ना छोटे बच्चों के साथ में खेलने का, उसको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो खुल के जीना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोझ तले हम बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं और केवल सोचा विचार ही करते करते हम लोग जीना भूल गए हैं। तो जब भी मौका लगे अपने आसपास वाले बच्चों के साथ में जरूर खेले, ये आपको अंदर से बहुत यंग फील कराएगा, यानी कि आप अपने अंदर के बच्चे से मिल पाएंगे। ये आपको खुशी भी देगा और जब आप मन से खुश होंगे ना तो ये आप बाहर का काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आजमा कर देखिए। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: करते हैं
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: समझना चाहिए।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: गंगापुर सिटी की धरतल
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। एक ऐसी आवाज जिसने हर दिल को छुआ, वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि जादू थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। हिंदी सिनेमा को जिसने अपनी अद्भुत आवाज में कई गाने दिए, वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश जी हैं। आज सफरनामे में हम बात करने जा रहे हैं मुकेश जी की। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1930 में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश के 10 भाई बहन थे और वो छठे नंबर पर थे। मुकेश को बचपन से ही गाने में रुचि थी। वो अपने क्लासमेट्स को गाना सुनाया करते थे। मुकेश जी ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे थे। मुकेश जी हमेशा से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे। और बातें मुकेश जी के बारे में कुछ ही देर में 89.6 डीएसएफएम पे मेरे यानी तनीषा के साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एक वेबसाइट को मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रोज सुबह उठकर वो सैर पर जाते थे, लौट कर तैयार होकर रियाज करने बैठ जाया करते थे। उसके बाद घर में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर वो रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते पढ़ते मुकेश इमोशनल हो जाया करते थे। तब माँ कहती थी कि इनके सामने से रामायण हटा लो, वरना ये रोते ही रहेंगे। ऐसे थे मुकेश जी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। मुकेश जी की बातें हम कर रहे थे। मुकेश जी मुश्किल से मुश्किल गीतों को इतनी सहजता और मधुरता से गा लेते थे कि उनके गीत सीधे दिलों में घर कर जाया करते थे। मुकेश की खास बात ये भी थी कि उन्होंने संगीत की बहुत ज्यादा विधिवत शिक्षा भी नहीं ली थी। कुछ दिग्गज गायकों को सुन सुनकर और गीत गा गा कर ही मुकेश ने खुद को संवारा और निखारा। सफरनामे में आज इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नेक कलाकार के साथ। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

चलो चलो चलो चलो चलो आंखें बंद करो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और अगर गाड़ी चला रहे तो आगे खोलो बंद मत करो। पर एक रिसर्च के मुताबिक 100 लोगों पे ये रिसर्च हुआ और उनसे कहा गया कि आंखें बंद, उसके बाद आंखें बंद करके पट्टी यानी ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनसे सीधे चलने को कहा गया तो कोई भी सीधा नहीं चल पाए। थोड़ी देर सीधे चले और उसके बाद वो सर्कल्स यानी गोल गोल घूमने लगे, और उसके बाद पता चला कि जब तक हमारे पास कोई विजुअल पॉइंट ना हो, कहीं फोकस ना हो, हम सीधा नहीं चल सकते। अगली बार अगर दोस्त से आपको शर्त लगाना हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना और बोलना कि चल सीधे चल के दिखाओ। सारे पैसे आपकी जेब में। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: दोस्तों रात्रि के 9 बज चुके हैं। फिलहाल आप ट्यून कर 99.6 रेडियो ओडियास गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: By chance, an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस अकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

दोस्तों रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आज की सभा का हम यहीं समापन करते हैं। प्रातः 5:55 पे सुबह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपके ऋषि भाई को दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि मित्रों।